0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

शंख कपाली भूषित करऊ मालास्ति माला धरऊ दिद्यौ द्वारवती श्मशान नीले दिहनौ नागारी गो बाहनौ दीत्र बरिदक्ष मतनौ मेघाद्रि राजा प्रभौ पापम मे रतौ सदा हरिहरौ श्री शैलजा वल्लभौ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साचि पारम

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बयानब्बे थपलो सात मेगा हर्जबाट म बद्री प्रसाद साहबकोट आज विक्रम सम्वत 2083 छ अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 मे 23 तारिक ज्येष्ठ 9 गते शनिबार सप्तमी तिथि अब स्तुति गरौं।

मिका पना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहरदा नारी ले प्रगति पथ को यज्ञ अधुरो व्यवस्था आस्था को जनक शिशु बंश टूरो पुर्याऊ फैलाऊ नवीन विधि यो स्वर्ग तलमा नता बन्दै जालान सकल सपन।

आनन्द कन्द श्री सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम छुत बोलिए श्री आनंद कन्द सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।